0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र संरक्षण समिति, शुक्ला गण्डकी 8 तनहुँ।

0: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
1: शुक्ला गंडकी टाइम चेक।
2: यति बेला बिहानको ठिक 9 बज्यो।

0: किवर्स ट्रेनिङ, केयर विथ कम्प्यासन, सर्भ विथ हार्ट।
1: सिप सिक्नुहोस्, भविष्य सुनिश्चित बनाउनुहोस्। सिटी भिटीद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सिम्स केयर गिभर्स दुलीगौडामा। सिटी भिटीको पाठ्यक्रममा आधारित 390 घण्टा तालिम।
2: हाम्रा विशेषताहरू:
1: अनुभवी एवं दक्ष प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण,
2: व्यावहारिक र प्रयोगत्मक सिकाइ,
1: रोजगारको लागि मार्गदर्शन तथा सहयोग,
2: सिपमूलक गुणस्तरीय र प्रमाणकारी तालिम,
1: स्वास्थ्य क्षेत्रमा करियर बनाउन उत्कृष्ट अवसर। भर्ना गर्ने अन्तिम मिति 2083 साल भदौ 31 गतेसम्म।
2: स्थान: सिम्स केयर गिभर्स, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौडा तनहुँ।
1: सम्पर्क: 98564443, 98041443688, 98041443688, 98560173773।
0: डोन्ट मिस दिस अपर्चुनिटी।
3: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6। शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
0: यति बेला मध्याह्नको ठिक 12 बज्यो।
4: OSR Digital, entertaining the nation.

0: गिभर्स ट्रेनिङ, केयर विथ कम्प्यासन, सर्भ विथ हार्ट।
1: सिप सिक्नुहोस्, भविष्य सुनिश्चित बनाउनुहोस्। सिटी भिटीद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सिम्स केयर गिभर्स दुलीगौडामा सिटी भिटीको पाठ्यक्रम आधारित 390 घण्टा तालिम।
0: हाम्रा विशेषताहरू:
1: अनुभवी एवं दक्ष प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण,
0: व्यावहारिक र प्रयोगत्मक सिकाइ,
1: रोजगारको लागि मार्गदर्शन तथा सहयोग,
0: सिपमूलक गुणस्तरीय र प्रमाणकारी तालिम,
1: स्वास्थ्य क्षेत्रमा करियर बनाउन उत्कृष्ट अवसर। भर्ना गर्ने अन्तिम मिति 2083 साल भदौ 31 गते सम्म।
0: स्थान: सिम्स केयर गिभर, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौडा तनहुँ।
1: सम्पर्क: 9856044343, 9801443688, 9801443688, 9560071773।
2: डोन्ट मिस दिस अपर्च्युनिटी।
3: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
4: तनहु सेवा हस्पिटलमा अब थप नयाँ व्यवस्थित व्यवस्थापनको साथमा दैनिक निम्न विशेषज्ञद्वारा सेवा उपलब्ध भइरहेको जानकारी गराइन्छ। फ्यामिली फिजिसियन एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसियन डाक्टर रविबहादुर गुरुङ दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म। नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर साजन बराल दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म। हार जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल विक दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीप गुरुङ दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म। बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमन कुमार झा दैनिक बिहान 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म। डाक्टर रूपेश कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा स्वास्थ्य परीक्षण, फिजियोथेरापी परामर्श तथा दैनिक उपचार सेवासँग सम्बन्धित सुसन कालु स्नेहा मण्डल दक्ष प्राविधिकद्वारा 24 घण्टा परामर्श सहितको फार्मेसी सेवा साथै निशुल्क होम डेलिभरी। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0564143377 र 9856044343।

उन्नति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 17 वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। उन्नति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगोडाको भदौ 9 गते